0: रेडिओ विश्वास
1: टाइम चेक
0: टाइम चेक।
2: दुपारचा एक वाजलाय आणि तुम्ही ऐकताय रेडिओ विश्वास, तुमचं जगणं तुमचा आवाज।
3: दिस आर इज ब्रॉट यू बाय विश्वास कोऑपरेटिव्ह बँक,
4: संचयात समृद्धी।
5: विश्वास बँकेची ATM सुविधा उपलब्ध। विश्वास कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड नाशिक, संचयात समृद्धी।
6: नमस्कार नाशिककर, मी विश्वास ठाकूर बोलतोय आणि आपण ऐकत आहात रेडिओ विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडिओ, तुमचं जगणं तुमचा आवाज।
7: आता रेडिओ विश्वास ऐका जगभरात कुठेही आणि कधीही। त्यासाठी प्ले स्टोअर वरून किंवा ऍप स्टोअर वरून रेडिओ विश्वास हे ऍप डाउनलोड करा आणि सुमधुर संगीताबरोबरच आस्वाद घ्या दर्जेदार कार्यक्रमांचा। रेडिओ विश्वास, अभिजात संस्कृतीचा सुमधुर आवाज।
8: दिल्ली पुकारा इस प्रोग्राम में प्रांजलि का सभी प्यारे श्रोताओं को सुरीला प्रणाम। गीतों की माला पहनाने आता है ये प्रोग्राम जिसका नाम है दिल्ली पुकारा, जो आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वास पर। आपने ट्यून किया है 90.8। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में सुनेंगे कुछ ऐसे नगमे जिनके मुखड़े हैं फिल्मों के नाम। जी हाँ दोस्तों, ये मुखड़े फिल्मों की पहचान बने हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जब निर्माता निर्देशक फिल्म बनाने की सोच रखते हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में फिल्म का शीर्षक क्या होगा ये बात आती होगी। शायद कुछ कहानियों के शीर्षक लेखकों द्वारा मिल ही जाते होंगे, पर जो नहीं मिलते उनका नाम क्या रखे। दोस्तों, नाम में ही तो सब कुछ रखा है। नाम ही पहचान है, आन है, बान है, शान है।

दोस्तों, फिल्म के मुखड़े से आपने पहचान ही लिया होगा कि फिल्म का नाम था एक बार मुस्कुरा दो। ये गीत गाया था आशा भोसले और किशोर कुमार ने, लिखा था शेवान रिजवी ने और संगीत से सजाया था ओपी नैयर ने। तो इस फिल्म की कहानी भी शायद कुछ दुख दर्द वाली होगी, इसलिए तो फिल्म का नायक ये बार बार कहता होगा एक बार मुस्कुरा दो, मतलब मेरी सोच ऐसी है। अब आप क्या कहते हैं, चलिए कुछ कहना है तो ज़रूर मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा 9657001835। तो आइए सुनते हैं दूसरा गीत जो गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने, लिखा है हसरत जयपुरी ने और फिल्म का नाम तो अब हम सुनेंगे ही इस गीत के ज़रिए।

दोस्तों, दिल ने पुकारा में अभी अपने प्यारा सा गीत सुना, जिसके नाम से समझा जाता है कि इस फिल्म में पेरिस शहर की प्यारी सी शाम देखने मिलेगी। सचमुच बड़ी सुंदर है ये फिल्म। 3 घंटे बैठकर हम पेरिस की सैर करके आते हैं, साथ में हीरो हीरोइन की कहानी के भी मजे लेते हैं। बड़े बड़े शहरों की बड़ी बड़ी कहानियां और वो बड़े बड़े हीरो हीरोइन, आंखें चैन पाती है ये फिल्में देखकर। क्यों दोस्तों, आपकी राय भी जरूर बताइएगा।

दिल ने पुकारा में अभी आपने सुना फिल्म ये रास्ते हैं प्यार के का गीत, गाया था आशा भोसले ने, लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, सुरों में पिरोया था रवि ने। इस बेहतरीन गीत ने सचमुच समा बना दिया है। प्यार की कहानी सफल हो जाए तो जिंदगी का सफर सुहाना बन जाता है, पर ये कहानी अगर अधूरी रहे तो न पूछो। इसलिए इन प्यार के रास्तों पर संभल के चलना चाहिए, यह तो बात है और यही बताती है ये फिल्म। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि फिल्में जिंदगी का समाज का आईना होती है। ये बात तो सच है, कुछ कहानियां जरूर मनगढ़ंत होंगी, पर जो समाज में होता है, हुआ है, वही तो दिखाती है ये फिल्में। थोड़ा बहुत 19-20 तो हो ही सकता है, पर फिल्मों में समाज का दर्शन जरूर होता है और होना चाहिए, ऐसी सोच तो है ही।

जिया जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो, जिया ओ जिया जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है, तुम एक हसीन हो लाखों में, भला पाके तुम्हें कोई खोता है, जिया ओ।

0: तो इस आग में जलते हो, चेहरे से बयां हो जाता है। हर बात पे आहें भरते हो, हर बात पे दिल भर जाता है। जब दिल पे चुड़िया चलती है, जब चैन से कोई सोता है। जियाओ जियाओ जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। जियाओ जियाओ जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। तुम एक हसीन हो लाख में, भल पाके तुम्हें कोई खोता है। ओ जिया ओ जिया ओ जिया कुछ बोल दो।
1: दोस्तों, जब प्यार किसी से होता है, इस फिल्म से आपने गाना सुना। चुलबुली आशा पारेख देवानंद पर फिल्माया गया ये गीत गाया था मोहम्मद रफ़ी ने। गीतकार थे हसरत जयपुरी और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। तो हर फिल्म में हीरो हीरोइन तो होने ही चाहिए, जिनके बगैर फिल्में नहीं होती। पर हाँ, कुछ फिल्में सत्य घटना पर आधारित भी होती है, उसमें भी प्यार की कहानियाँ घुसेड़ दी जाती हैं। क्योंकि दोस्तों, प्यार एक पूजा है, दिल एक मंदिर है, और दिल से तो जिंदगी की शुरुआत है। तो बहुत सारी फिल्मों के नाम क्यों न शुरू हो इसी शब्द से। देखिए, दिल एक मंदिर, दिल अपना और प्रीत पराई, दिल दिया दर्द लिया, दिल ने फिर याद किया। तो चलिए, इसी में से एक फिल्म का शीर्षक गीत सुनते हैं। गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, लिखा है शकील बदायूनी ने, संगीतकार है नौशाद।

तो दोस्तों, ऐसे ही सुनहरे नगमे सुनते रहेंगे और सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे रेडियो विश्वास 90.8। और फिर से मिलेंगे अगले मंगलवार। तब तक नमस्कार।

से फिर लौट कर जाना है ये मालूम था उस वक्त भी, जब शाम की सुर्ख सुनहरी रेत पर वो दौड़ती आई थी। लहरा के यूं आगोश में बिखरी थी जैसे पूरे का पूरा समुद्र लेके।

से जाना है वो भी जानती तो थी, मगर हर रात फिर भी हाथ रखकर चांद पर खाते रहे कसमें। न मैं उतरूंगा सांसों के साहिल से, न वो उतरेगी मेरे आसमां पर झूलते तारों की पीनों से। मगर जब कहते कहते दास्तां फिर वक्त ने लंबी जमाई ली, न वो ठहरी

का सुलगते चांद को फिर भी उसे एक एक कला घटते हुए देखा। बहुत खींचा समंदर को मगर साहिल तलक हम ला नहीं पाए। शहर के वक्त

जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

जवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भाग किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

जान पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो।

0: Ieri eu și vas.
1: Time check.
2: रात्रीचे 10 वाजले आणि तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ विश्वास 90.8 FM. तुमचं जगणं तुमचा आवाज.
3: This hour is brought to you by विश्वास कोऑपरेटिव्ह बँक.
2: संचयात समृद्धी.
4: आता विश्वास बँकेच्या मोबाईल ऍप मार्फत इंटर ब्रांच ट्रान्झॅक्शन आणि नेट सुविधा अर्थातच NEFT उपलब्ध. ग्राहकांनी ऍप रजिस्ट्रेशनचा फॉर्म नजीकच्या शाखेत भरून सदर सुविधेचा जरूर लाभ घ्यावा.
5: नमस्कार नाशिककर, मी विश्वास ठाकूर बोलतोय आणि आपण ऐकत आहात रेडिओ विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडिओ. तुमचं जगणं तुमचा आवाज.
4: आता रेडिओ विश्वास ऐका जगभरात कुठेही आणि कधीही. त्यासाठी प्ले स्टोअर वरून किंवा ऍप स्टोअर वरून रेडिओ विश्वास हे ऍप डाउनलोड करा आणि सुमधुर संगीताबरोबरच आस्वाद घ्या दर्जेदार कार्यक्रमांचा. रेडिओ विश्वास, अभिजात संस्कृतीचा सुमधुर आवाज.
6: दिल्ली पुकारा इस प्रोग्राम में प्रांजलि का सभी प्यारे श्रोताओं को सुरीला प्रणाम. गीतों की माला पहनाने आता है ये प्रोग्राम जिसका नाम है दिल्ली पुकारा, जो आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वास पर. आपने ट्यून किया है 90.8. दोस्तों, आज के प्रोग्राम में सुनेंगे कुछ ऐसे नगमे जिनके मुखड़े हैं फिल्मों के नाम. जी हाँ दोस्तों, ये मुखड़े फिल्मों की पहचान बने हैं. कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जब निर्माता निर्देशक फिल्म बनाने की सोच रखते हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में फिल्म का शीर्षक क्या होगा ये बात आती होगी. शायद कुछ कहानियों के शीर्षक लेखकों द्वारा मिल ही जाते होंगे, पर जो नहीं मिलते उनका नाम क्या रखे. दोस्तों, नाम में ही तो सब कुछ रखा है. नाम ही पहचान है, आन है, बान है, शान है.

दोस्तों, फिल्म के मुखड़े से आपने पहचान ही लिया होगा कि फिल्म का नाम था एक बार मुस्कुरा दो। ये गीत गाया था आशा भोसले और किशोर कुमार ने, लिखा था शेवान रिजवी ने और संगीत से सजाया था उपिन अय्यर ने। तो इस फिल्म की कहानी भी शायद कुछ दुख दर्द वाली होगी, इसलिए तो फिल्म का नायक ये बार बार कहता होगा एक बार मुस्कुरा दो, मतलब मेरी सोच ऐसी है। अब आप क्या कहते हैं, चलिए कुछ कहना है तो ज़रूर मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा 9657001835। तो आइए सुनते हैं दूसरा गीत जो गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने, लिखा है हसरत जयपुरी ने, और फिल्म का नाम तो अब हम सुनेंगे ही इस गीत के ज़रिए।

दोस्तों, दिल ने पुकारा में अभी अपने प्यारा सा गीत सुना, जिसके नाम से समझा जाता है कि इस फिल्म में पेरिस शहर की प्यारी सी ईशाम देखने मिलेगी। सचमुच बड़ी सुंदर है ये फिल्म। 3 घंटे बैठकर हम पेरिस की सैर करके आते हैं, साथ में हीरो हीरोइन की कहानी के भी मजे लेते हैं। बड़े बड़े शहरों की बड़ी बड़ी कहानियां और वो बड़े बड़े हीरो हीरोइन। आंखें चैन पाती है ये फिल्में देखकर। क्यों दोस्तों, आपकी राय भी जरूर बताइएगा।

का आईना होती है। ये बात तो सच है, कुछ कहानियाँ ज़रूर मनगढ़ंत होंगी, पर जो समाज में होता है, हुआ है, वही तो दिखाती है ये फिल्में। थोड़ा बहुत 19-20 तो हो ही सकता है, पर फिल्मों में समाज का दर्शन ज़रूर होता है और होना चाहिए, ऐसी सोच तो है ही।

ना जी अब कुछ बोल दो। अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो तो जिया ओ जिया ओ जिया कुछ बोल दो। अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। तुम एक हसीन हो लाखों में, भला पाके तुम्हें कोई खोता है। जिया ओ।

0: के साथ में चलते हो, चेहरे से बयां हो जाता है, हर बात पे आहे भरते हो, हर बात पे दिल भर जाता है। जब दिल पे चुड़ियां चलती है तब चैन से कोई सोता है। जिया ओ जिया ओ जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो, जिया ओ जिया ओ जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है, तुम एक हसीन हो लाखों में, भल पाके तुम्हें कोई खोता है। ओ जिया ओ जिया ओ जिया कुछ बोल दो।
1: दोस्तों, जब प्यार किसी से होता है, इस फिल्म से आपने गाना सुना। चुलबुली आशा पारेख देवानंद पर फिल्माया गया ये गीत गाया था मोहम्मद रफ़ी ने, गीतकार थे हसरत जयपुरी और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। तो हर फिल्म में हीरो हीरोइन तो होने ही चाहिए, जिनके बगैर फिल्में नहीं होती। पर हाँ, कुछ फिल्में सत्य घटना पर आधारित भी होती है, उसमें भी प्यार की कहानियाँ घुसेड़ दी जाती हैं। क्योंकि दोस्तों, प्यार एक पूजा है, दिल एक मंदिर है, और दिल से तो जिंदगी की शुरुआत है। तो बहुत सारी फिल्मों के नाम क्यों न शुरू हो इसी शब्द से। देखिए, दिल एक मंदिर, दिल अपना और प्रीत पराई, दिल दिया दर्द लिया, दिल ने फिर याद किया,

तो चलिए इसी में से एक फिल्म का शीर्षक गीत सुनते हैं। गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, लिखा है शकील बदायूनी ने, संगीतकार है नौशाद।

तो दोस्तों ऐसे ही सुनहरे नगमे सुनते रहेंगे और सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे रेडियो विश्वास 90.8 और फिर से मिलेंगे अगले मंगलवार। तब तक नमस्कार।

खबरदार छुप छुप के क्यों छुप छुप के प्यार करे तू, बड़ा छुपा हुआ रुस्तम है तू। क्यों छुप छुप के प्यार करे तू,

अरे हम दम है अगर हम तो तुम्हें हम क्या है, मेरे होते हुए ये सांस है क्यों सर्द तेरा, ये जहां गर्द जवान।